0: डिग्री गाउँमा काठमाडौँबाट डाक्टर आउने बारे सूचना।
1: यही असोज 9 गते शुक्रबारको दिन
0: पेट, छाती, सुगर प्रेसर र थाइराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन रौनियर एवं पाइल्स, फिसर, फिस्टुला विशेषज्ञ डाक्टर प्रभाकर शाहद्वारा बिरामी जाँच उपचार तथा अपरेसन हुने जानकारी गराउँदछौ।

0: जीतपुर वाली यह साल तो निश्चिंत हुई गवा गए।
1: हाँ तब पतलिया याद करो तो जू डराए लागा था। पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत रहा। सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
0: हाँ तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल गवा।
2: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होत है, यही नाते बाढ़ से बचे खरती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सबके संपर्क करे, सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सब सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतुए बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए, सब सफाई में ध्यान दिया जाए।
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।
4: रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज नामै काफी छ।
5: साथ साथ उस्तै छ।

0: क्या तम आफ्ना गया दिन कि रे आपने दिन के बारे में जान्न चाहन्छौ कसो हो भने आशा ज्योतिष दर्पण ज्योतिष कार्यालय भरतपुर चितवन में
1: हमारा यहाँ वृंदावन बठे ज्योतिष विद्या पढ़वटी आया ज्योतिष विद्या का बारे में बहुत ही जानकारी भैया बहुत ही वर्ष अगाड़ी बठे ज्योतिष विद्या का बारे में जान्ने देश र परदेश में सम्मान र ख्याति पाएका ज्योतिष पण्डित लक्ष्मण सुवेदीले कम्प्युटर का माध्यम बठे चिना चिठा बनाउने रे चिठा भाग्य हेद्या घर बनाउना कि लेखा माटो हेद्या वास्तुशास्त्र का बारे में सब बताउने पीर्ति को उद्धार गद्या रत्नले जन्तर बीज लाउने जन्म कुण्डली में भएको दोष ग्रह को शांति विशेष धार्मिक रे बौद्धिक विधि बठे गद्या
0: सम्पर्क कि लेखा ज्योतिष पण्डित लक्ष्मण सुवेदी ज्योतिष दर्पण ज्योतिष कार्यालय भरतपुर चितवन
1: फोन गद्दा की लेखा फोन नंबर 9845-3976-58 रे 9814-27-3601 तमु फोन बठेले आफ्नो भाग्य हेर्न सकन्छौ आज संगीतमय पुराण लगाउनक लेखालाई सम्झन सकन्छौ
2: अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ संस्कार र संस्कृतिको संवाहक सनातन रेडियो नेटवर्कमा कार्यक्रम ज्योतिष दर्पण।

0: चुट्टे प्रयोगका लाग झटपट झोला तयार पारी ओ बर्ख ग्यालम संक्रमण के डर तयार हुइल पर्से पानी ढिकाक पी स्वच्छतामा ख्याल करी।
1: प्लान इन्टरनेसनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारीमा बर्दिया जिल्लामा सञ्चालन हुइरहल विपद पूर्व तयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजनाद्वारा जनहितके लाग जारी सन्देश।
2: सूचना समाचार अनि मनोरञ्जनको साथी रेडियो।

0: एक्सरेद्वारा गरिन्छ।
1: साइना मेडिकल हलका सेवाहरू,
2: भिडियो एक्सरे, ल्याब सेवा, विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा बिरामी जाँच, आँखा जाँच अनुसारको चस्मा तयार गरिने, प्रत्येक महिनाको चौथो शनिबार रेडियोलोजिस्टद्वारा भिडियो एक्सरे, एनुमली स्क्यान, पाठेघर लगायत सबै प्रकारको भिडियो एक्सरे पनि गरिन्छ।
0: साथै थाइरोइड स्क्यान, ब्रेस्ट स्क्यान, सुपरफिसियल स्क्यान, पाठेघरको जाँच तथा सबै प्रकारको भिडियो एक्सरे सेवा समेत उपलब्ध रहेको छ।
3: साथै रगत, सुगर, थाइरोइड, टाइफाइड, A1C, LFT, RFT, युरिक एसिड, बाथरोग, क्याल्सियम पिसाब तथा दिशा जाँच गरिन्छ।
0: स्मरण रहोस्, दैनिक विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा बिरामी जाँच, दृष्टि विशेषज्ञद्वारा आँखा जाँच तथा चस्मा पनि तयार गरिन्छ।
1: साइना मेडिकल हल भुरी गाउँमा जिल्ला अस्पताल गुलरिया बर्दियामा कार्यरत MBBS MD कन्सल्टेन्ट फिजिसियन, छाती, मुटु, पेट, नसा, थाइरोइड, दम तथा मधुमेह रोग विशेषज्ञ डाक्टर सूर्य प्रकाश शाहका साथै दृष्टि विशेषज्ञ नेहा शाह र पूर्व जनस्वास्थ्य निरीक्षक हेल्थ असिस्टेन्ट SY नवीन शाहबाट बिरामी चेक जाँच गरिन्छ।
3: साइना मेडिकल हल भुरीगाउँ बजार बर्दिया वाणिज्य बैंकको पश्चिम पट्टि। नाम दर्ताका लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 442 55 909 र 98 442 57 517।
4: कान्छी, गहना कहाँबाट किन्ने सोच बनाएकी छौ? कहाँबाट हुनु नि दिदी, म त अन्त कतै नगई हाम्रै सुन्दर नगरी भुरी गाउँमा रहेको विजय सुनचाँदी पसलमा जाने विचार गरेकी छु।
5: विजय सुनचाँदी पसलमा नै किन नि?
4: त्यहाँ त आकर्षक डिजाइनका गर गहनाहरूमा झाला, जुली, फुली, मंगलसूत्र, जन्तर, छड्के, तिलहरी, इन्डियन मंगलसूत्र लगायत बिना रसायनका गर गहना पाइनुका साथै आधुनिक डिजाइनका सामानहरू उचित मूल्यमा अर्डर अनुसार तयार गरिन्छ। साथै हामी कहाँ नेपालगंजकै मूल्यमा सुनचाँदी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। विजय सुनचाँदी पसल अब नयाँ व्यवस्थापनका साथ सञ्चालनमा आएको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। प्रोपराइटर श्यामलाल सुनार, विजय सुनचाँदी पसल, ठाकुरबाबा नगरपालिका 1, भुरीगाउँ बर्दिया। सम्पर्क नम्बर 98 83 68 58। ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो चाहना हो।
6: हाँ, तब पतलिया याद करो तो जूटे राय लागत है। पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत रहा। सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
7: हाँ, तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल कर।
8: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होता है, यही नाते बाढ़ से बचे खर्ती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सबके संपर्क करे, सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सब सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए, सब सफाई में ध्यान दिया जाए।
9: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।
10: यो हो बर्दिया को
11: सूचना, समाचार अनि मनोरंजन को साथी रेडियो।

0: कटिङ सुटिङ सुट पिक कुर्ता सुरुवाल जरिवाल साडी ब्लाउजको कपडासँगै तन्ना सिरक दसना सिरानी पनि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर बिन्तीराम राजभन रुक्मिणी वस्त्रालय भुरीगाउँ बजार बर्दिया देवीराम चौकदेखि त्रिभुवन स्कूल जाने बाटो। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98681-0986-93।
1: अशोक साल त ढुक्क नारे बन्ती
2: हाँ त पोर्सालिक बात सम्झोट आम्मिन्दर लक्ती र हटबरा पानी बस्तबेर अस्ति चिम कहाँ रहेछ जाए त सोचो त लट्ठी ठिक्कन घर डान डान पानी बर्से टिकी मन छत पटाए लाग
1: हाँ त धन्न व्यालम्ब डिकुम छ सुरक्षित ठाउँमा सरले नारे बन्ती
2: हाँ हो बदा
3: बर्खक व्यालमा बहिर ढ्यार जोखिम रहत उहमार बहिया से बचकला पहिला सावधानी अपनाए लद्या खोलम पानी बरहल बाकल से सावधान रहिए। एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण का सूची बनाई एक चुट्टे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ध्यान हुलक ओर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी।
4: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश

प्रिय मैग्र कविला हुक जय मसी ओ नमस्कार म अपना हुकन के सामु फे महात्मा प्रसाद चौधरी आगिला हुँ। आज हाम्रा व्यवस्थापक कना शीर्षकमा वचन हेर जाइ पहिल कोरन्थी चार अध्यायमा परमेश्वरमा विश्वास योग्यताक बारेमा बात बटाइल्दा ओ परमेश्वर कसिका हमारमा विश्वास गर्था कना बात फे बटाइल्दा पहिलो कोरन्थी चार अध्यायकी एक पदमा सिका कहत पुरा हमन परमेश्वरका ख्रिस्टका सेवक सम्झ पर्था हमन परमेश्वरका रहस्य बात प्रकट गर्न जिम्मा देगेल बा असिन काममा जिम्मा पाइल सेवक विश्वास योग्य हुई पर्था ऊ रहस्य बात चाहिँ का हुई जुन यहाँ बटाइल बा परमेश्वरका मुक्तिक बात जुन एक समयमा हुई कना बटाइल बा यी चाहिँ एकदम रहस्य बात हो तर आमिन सम्नाई परमेश्वरका योजना यहुदी मनै हुन बीचमा अही जे मसीहा हुई त कहिका बटाइल बा जे सारा मनैनाको डार करता रही ज्याकर नाउ येशु रही कहिका बटाइल रहा यी येशु जे क्रुसमा गइला ओ दुःख भोगला ओ मुला उहाँ आफन जीवन अर्पण कैला ताकि जे उहाँमा विश्वास गरी ऊ अनन्त जीवन पाइसे जब अपना परमेश्वरमा आइबी अपना सारा पाप उहाँमा क्षमा हुई उहाँमा ऐना बात अपना पश्चाताप कैना कैका कथी अपना जीवनमा कैला पापमा पश्चाताप गर्बी ओ अपना जीना जीवनसे अपना लौटबी अपना कैला सारा खराब काममा छोड्बी अपना जीवनका प्रभु कैका ख्रिस्ट मा आपन जीवनमा बलैबी ओ मुक्तिदाता कैका स्वीकार गर्बी उहाँमा लौ जीवन जिना कैका कवि कलसे अपना उहाँमा मुक्ति पाइबी यी चाहिँ एकदम भार रहस्य बात आज संसारमा ध्यानमा नै उक्र बात जे यी बाटा ख्रिस्ट येशु दोस्रो आगमन सम यी योजना हा जान नै पाइने ओ आप यी बात हा उहाँमा विश्वास गरल मनै उक्र बोक कन्याङ था ओ यी बात अब कौन मेरिक तरिका से नुकाका नै धैगिल हो आब हाम्रा यी बात हा जत्रा ध्यान मनै हुकन फे बताई सक्बी यी बाटक मध्य नजर करती यी बातका निचोड यी हो कि जे रहस्यक बातमा इच्छा जनाइल बा ऊ चाहिँ विश्वास योग्य बन्न बारेमा प्रमाणित गरहित पर्न बा ओ यी बात हाम्रो विचार गरी कहिका मै कहक चाह कि ख्रिस्ट एक विश्वासी हुइला कोर्से अथवा ख्रिस्टका एक विश्वासी हुइला कोर्से हाम्रा हाम्रो विश्वास उहाँमा कसिका देखाइ सक्बी उहाँमा हाम्रो विश्वास कसिका प्रमाणित गर सक्बी बात देखाइला हाम्रो ढ्यार तरिका से कह सक्बी पहिल बात चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत नैतिकता से देखाइ सक्छ जसमा हाम्रा बटाइल रहलै कि जब हाम्रा ख्रिस्टमा विश्वास गर्ती कला से हाम्रा पापी जीवन छोड्थी ओ हाम्रा परमेश्वरमा मजा जीवनका अभ्यास गर्ती ख्रिस्ट हाम्रा लाग ज्या कैल उहाँमा वाकर लाग धन्यवादी बन्थी और मनै हुक्रा एकदम क्रिस्टिया कर्छ और मनै हुक्रा एकदम ईश्वरी अभिभावक पैछ जुन महत्वपूर्ण रहेछ हमार विश्वास हमार लड़का बच्चन मा सर्थी ओकना लड़का बच्चन मा फे ख्रिस्ट येशु संग नेगाई नेंठी कना बातम हमरा विश्वास करथि हुकरा विश्वासी नक लाग इ बात एकदम महत्वपूर्ण बात और विश्वासी हुकरा सोचथे कि परमेश्वर मा विश्वास योग्य होइन बात चाहिँ एकदम महत्वपूर्ण बात हो जब इ बात वहाँ वचन अध्ययन का संदर्भ मा आइथा हमरा एक विद्यार्थी अस खुइलक हो का करे कि यी चाहिँ चेला हुइन अर्थ चाहिँ हो येशु हा पछ्याल पहिले मनै हुकरा चेलाओ हुकरा हुइता ओ उहर से आज चेला हुकरा ओ मनै हुकरा हुइता जे वहाँ वचन अध्ययन मनन ओ वहाँ बारेमा जान खोज्ना वहाँ बारेमा वहाँ बुद्धिमा वहाँ जस्ता बन खोज्न चाहि ओ जे ख्रिस्ट का सुसमाचार हा सुनाइ ख्वादत ओ ख्रिस्ट का गवाही हा दिह ख्वादत ओ चाहिँ चेला यी काम चाहिँ येशु हमार जीवनमा भएकै उहाँ चाहन्छ उहाँ मत्ती 28 अध्यायमा बटाइल बात हमार जीवनमा भएकै उहाँ चाहन्छ कि हाम्रा सारा जातिक मनै हुक्रा चेला बनाइकन उहाँकी इच्छा हो उहाँहरूसे यी सब डगर चाहिँ उहाँमा विश्वास योग्य हुइन डगर तर यी मध्ये कौनो फे बाधाको रूपमा नै हो यी सक्कु काम करल बा ज्याहुलासे फे मै आज विश्वास योग्य और भागका बारेमा बात बटुइन और भौतिक चाजमा हाम्रा विश्वास योग्यता हा कसिका काम कर सिक्जाइकन बात हामन दिहल बा जुन चार्ज हमन आशिषका रूपमा दिहल ऊ चार्जक साथ हाम्रा का गर्थे हाम्रा भाइल पैसा हाम्रा कसिका खर्च गर्थे परमेश्वरमा विश्वास योग्य होइन हो उहाँसे पहिला आशिषमा हाम्रा विश्वास योग्य होइन यी एकदम आधारभूत बात उहाँ देलक चाजम हाम्रा कसिका खर्च गर्न फजुल खर्च नै कैना ओ परमेश्वरमै महिन देलक चाज हामी एकदम होसियारी साथ प्रयोग कैना हो कि ताकि हाम्रा परमेश्वरका महिमाक लाग उहाँका राज्यक लाग खर्च गर सकी और मेरो से कहब्याला हाम्रा हाम्रा पैसा से परमेश्वरका आराधना गर पर्था जब हाम्रा कौनो चार्ज या रुपियाँ पैसा प्रयोग गर्थी हाम्रा हाम्रा फाइदाक लाग नाही हाम्रा मजा कपडाक लाग नाही हाम्रा यस आरामके जीवनके लाग नाही तर हाम्रो भौतिक चाज चाह आर्थिक चाज से परमेश्वरका राज्यमा ध्यान आत्मा हे जितक लाग प्रयोग गर पर्था यी काम चाहिँ एक सेवकका काम हो
एक सेवा असीन काम करन्छ ओभर से यी बारेमा एकछि विचार गरी रुपियाँ पैसा हमन एकदम चाहना चाज हो हाम्रा हाम्रो रुपियाँ पैसा है केहरो खर्च गर्थी तो हाम्रो हाम्रो रुपियाँ पैसा हाँ केहर प्रयोग करला बाटी त कैका जब हाम्रा लेखा जोखा धर्बी हाम्रा सहज हाम्रो खर्च विवरण है हेरका थाहा गर्छ यिनसे हाम्रा कमाइल हाम्रो रुपियाँ पैसा है कुन हेराइसे हेर टिकै सहज थाहा गर्छ क्रिस्टियन मनै मुक्र एकदम रहस्यक बात परमेश्वरका वचन से बुझल बाट कि पैसाक शक्ति चाहिँ खर्च कैन शक्ति चाहिँ नै हो व्यापारिक नीति चाहिँ पैसा है खर्च गर प्रथा कना हुई था ऊ चाहिँ गलत हो पैसा सही शक्ति कलक पैसा से पैसा कमैना हो इन और मेरे से कह बेला अपना पक्ष में हो के ध्यार पैसा कमैना हो तर विश्वासी हुकरा याकर विरोध करथा का करे कि हरेक चार्ज हमन दिहल बा ताकि हमरा परमेश्वर का महिमक लागि याकर व्यवस्थापन करी वो से हमार मुख्य उद्देश्य चाहिँ हमार लाग ध्यार कमैना नै हो तर हमरा प्रयोग करती क्रम में और जहान मजा प्रभाव पर्ना हो ताकि ऊ मनै हुकरा ख्रिस्टमा आइसेका मनै हुकरा परमेश्वरमा धन्यवादी हुई अब विचार करी मनै हुकरा परमेश्वरमा धन्यवादी हुई कि नै हुई कना बात है हेर्न एकदम सजिलो तरिका हो ओ ख्रिस्ट येशूमा पहिला जिम्मेवारी हाँ हुकरा मजासे पूरा करत कि नै गर्छु त ऊ बाट हेर्न एकदम सजिलो तरिका चाहिँ हुकरा परमेश्वरमा देना भेटी देना आराधना चाहिँ हुकनक परमेश्वर है कुन प्रकारले लेला बाटा कना आस्था जनाइ यदि कौनो मन यहाँ परमेश्वरमा देना काम नै करत कलसे ऊ बापसे यह प्रमाणित बिथा कि ऊ मन यहाँ विश्वासमा कमजोर बा कि त ऊ मन यहाँ विश्वासै नै बिचिस आज ध्यार मनै हुक्रा ओकरा रुपियाँ पैसा हे सही काममा प्रयोग गर्न नै सक्छ ओ मै आग्रह गर्न चाहन्छु कि हरेक विश्वासी मनै हुक्रा हमार भौतिक चार्ज हाँ आर्थिक चार्ज हाँ एकदम होसियारी साथ चलाइ पर्थ एकचो विचार करी कौनो मन यहाँ 1000 रुपियाँ कमाइल कला से वहाँ 10% 100 रुपियाँ परमेश्वरमा दशांश खाना यी मन यहाँ एकदम कमजोर गरीब वहाँ ध्यार जिम्मेवारी बाटिस रफे परमेश्वरमा अपन दशांश लेकर आए एक विश्वासी यह काम द्वारा

मध्य रहल सब चाजक मुख्य बनैला ओ बनाइल समय ठेसे परमेश्वर हुकार खातिर मिश्रित घरमा ध्यार आशिष देला। एकदम मजा बात त यो हो कि योसेफ कमुइया रहल तर फे परमेश्वर उहिना आशिष देला। का करा कि ज्या चाज दिहल रह उ चाजमा एकदम बुद्धिमान तरिका से वाकर सदुपयोग योसेफ करल रहल। यी बात विकास यहाँ हुई हो यी मेरी तरिका चाहिँ आज हाम्रा हरेक विश्वासी मन कर पर्न बा परमेश्वर देला हरेक चाज हाम्रा लिह नै सक्थी ओ वाकर सदुपयोग कर नै सक्थी। वर से क्रिस्टियन हुक्रे हाम्रा कुछ चाज कर नै सक्थी हाम्रा मजा से सदुपयोग कर नै सक्थी खाली खर्च खर्च के लिए करथी। भौतिक चाजमा हमार खर्च हुई था जुन चाहिँ हमार ध्यार महत्व रह जीवित परमेश्वर भन्दा हाम्रा वाकर आराधना करथी वाकरमा बढी ध्यान दे ठिक कलसे ऊ चाहिँ एक मूर्ति पूजा हो कि धर्म संस्था मन बताए। यदि अपने एक सच्चा विश्वासी हुई ठिक कलसे अपना परमेश्वर भौतिक परमेश्वर नहीं हुई कहीं का अपना बुझा पर्था असीन काम विश्वासी मने हुकर नहीं करता। ये चाहिँ एक खेल सको एक विश्वासी मने अपन पैसा भौतिक चार्ज में फाकर नहीं पर्था। हमरा हमार विश्वास साँचो परमेश्वरमा धारा पर्था उहाँ हमन ज्या दिहल बात त उ चाज हाम्रा एकदम मजासे मिलैन बारेमा हेर पर्था। खेलवाड थन्न बात चाहिँ एक व्यवस्थित मिना बात नै हो यी चाहिँ बाचा हा ओ प्रगति हा बेकार थन्न हो वर से खेलवाड नै कैना हो। काकर कि परमेश्वर महिन देलक चाज हमें बेकार जाय नै दिहम हाम्रा वागर एकदम मजासे व्यवस्थापन करी कै उहाँ हमन हमार जीवन से चाहता यी बात हा अपना बुझी कै मै कहक चाहत ओ परमेश्वर अपना हा देलक चाज हा अपना कसी का व्यवस्थापन करती वहाँ अपना यीशु मा मुक्ति देला बाटा तर अपना देला हरेक चाज पैसा समेत परमेश्वर का आशीष हो। वहाँ चाहते कि उस सब चाज अपना एकदम होशियारी साथ बुद्धिमता के साथ वाकर प्रयोग करे अपना परमेश्वर का देला चाजक व्यवस्थापन एक भंडारे हुई था अपना से ज्यादा उस सब चाज परमेश्वर अपना हाँ उधारी देला बाटा। इस सब चाज एक दिन हेरा का चल जाए जसा का दोसरो पत्रुस तीन में बताएल बा यीशु दोसरो आगमन नैवित सम हमरा याकर सदुपयोग एकदम बुद्धिमान तरीका से कहना बा जो प्रभु ही वहाँ हरेक चाजक लेखा हमन से लिए ही वहाँ देलक हरेक चाज में हमरा कतरा ईमानदार हुईली वाकर हिसाब किताब वहाँ करही। आज की वचन द्वारा परमेश्वर अपना ध्यान आशीष दिया।

प्रिय मैगर कवि लहुद्रा, आजिक कार्यक्रम सुनके अपने ही कसिन लागल आशा बा पक्कै फेन आशिषमय लागल हुई। यदि ई कार्यक्रम के लाग अपने के थन कौनो प्रश्न जिज्ञासा हो सुझाव बा कले से वस्तहा का बाइबल सम्बन्धी कौनो पुस्तक पुस्तिका पाएक जाठी कले से एकदम ढुकचुक निमान का पत्राचार करी। हमार ठेगाना बा कार्यक्रम मुक्ति सन्देश TWR नेपाल GPO बक्स नम्बर 8975 EPC 2561 काठमाडौँ नेपाल। SMS के लाग मोबाइल नम्बर NTC

0: रोने
1: एक्शन ले बबो तुदा तुदा जेतुका हां बबो हां बबो एतना देखि एतना देखि ना ओ तानी तिम लानी तिम नानी दे हां ओ दे लेपट इंगुरिया
2: आगाली मुझे देख आगाली मुझे देख বেশি না পচি না একটু পচে দেখি পচা দিতে
1: হবে বেটা দেখ বেটা দেখ কাজ
3: করে

0: Hello, everyone.
1: Namaste, main Sara Ali Khan.
0: And I am Vicky Kaushal.
1: We hope you love this music video.
0: Do like and share, and do not forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel.
2: तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए
3: रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ट्ज नामै काफी छ।

कमर में बचा पूंगी उठानूंगी बांध ममा कमर पे आज समा बना है रुकना तमा मना है आज हमा हमा नहीं आज समा समा समा